0: रोज आर्गुमेंट नी चंगी ते पमरे नो गुड़ चगड़े चेड़े
1: लेट्स अंडरस्टैंड ईच अदर